लक्ष्मणाग्रज उदिता लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लाङ्गलायुधा लग्नकामरहस्तश्री चरणा

श्रुतिः सर्वप्रभात निर्महात्री समानाधिक वर्धिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदया ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा।

लब्धरूपा लब्धचित् लब्धवाञ्छिताय लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कार दुर्गमा लब्धशक्ति लब्धदेश लब्धैश्वर्यसमुन्नति लब्धबुद्धि लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वाङ्गसौन्दर्य लब्धविभ्रमा लब्धराग